जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, पलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं भूखी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यईमा अलिना पं छेगु जीवन या पला पला नेपकीमा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, पलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: Life-Changing Quotes。मानिसहरूले तपाईंको बारेमा जे सोचे पनि सधैं तपाईं आफ्नै गीत गाउन जारी राख्नुहोस् सधैं।
1: नेपाली पप गीतहरुको उतार चढ़ाव कुन गीत कुन स्थानमा छ, साथै नेपाली पप गीतहरुबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नु होला। टिप्स मोस्ट वांटेड, टिप्स मोस्ट वांटेड।
2: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे, आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे।
3: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम
6: Best romantic Hindi song, best romantic Hindi song.
7: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
6: Best romantic Hindi songs. Every Sunday 9 PM, Tuesday 6 PM.
7: पहला नशा पहला खुमार
6: Station gives FM 98.3 megahertz.
7: नया प्यार
8: Just move your feet, just move your feet. Enjoy the dance beat, enjoy the dance beat. Dance beat. Friday 8 a.m. and Saturday 6 p.m.

0: enjoy 60s, 70s and 80s Bollywood numbers.
1: Chandan Sabadan, Chanchal Chitvan, Dheere Se Tera Ye Muskaan.
0: Bollywood Golden Hits.
2: Ayyavali Pyar Ka Dushman Hai Hai.
0: Every Monday and Friday 10 p.m. Sunday and Tuesday 4 p.m.
3: Hey, bachna, hey, haseeno, lo main aa gaya.
4: Samay biteko pattai hudaina. Tara ke tapaiko paisa samay sangai badi raheko cha. Aba dhilo nagarnos. Tapai suteko belama pani tapaiko paisale tapaika lagi kaam garne cha. Matra 1000 rupaiya bata SIP shuru garnos. Tapaiko thorai thorai share lagani le bhuli ko sapna pura garcha. Na dherai jannu parne jhanjhat, na bajar ko utar chadhav ko dar. SIP ma thorai lagani bajar ko faida ra bhavishya ma ramro pratifal. Aajai online marfat wa najikko macha pusra bank wa capital ma samparka gari macha pusra SIP yojana शुरू करना होस।
5: मोटरसाइकल बैटरी इजी एक्सचेंज ऑफर।
6: तपाई को पुरानो मोटरसाइकल बैटरी हरू एक्सचेंज गरी नया 48 महीना सम्मा वारंटी भाई का मेंटेनेंस फ्री मोटरसाइकल बैटरी हरू लगने होस।
7: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स

0: नेपाल भाषा या न्याय बुझेचौ मेत
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: FM 98.2 MHz. जातुनें
1: केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 FM मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM मा
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
4: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
1: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
1: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
3: Listen to your favorite classic English songs. Only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station Kips FM 98.3 megahertz.
4: Namaskar ani hardik swagat cha. Tapai sundai hunuhuncha Kips 98.3 FM.
5: हजुर नमस्ते अनि स्वागत छ यो किप्स एफएम
6: 98.3 सुजल अप्पा अनि नमस्कार किप्स 98.3 एफएम
7: यो हो किप्स 98.3 एफएम तपाई सँगको सहयात्रा
3: क्लासिक हिन्दी पप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: Kips 98.3 FM, your companion.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो।

0: Every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara dev chhoera ma
2: Nepali super hits
0: only on Kips FM 98.3
3: पुरै एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीत हरू
4: थ्री इन वन
5: एवरी सैटरडे 9 a.m. एंड थर्सडे 6 p.m.

0: Life-changing quotes. सुन्दर व्यक्ति सधैं राम्रो नहुन पनि सक्छ, तर राम्रो व्यक्ति सधैं सुन्दर हुन्छ। यो भनाइ हो मदर टेरेसाको।
1: राजा मतिवा मती नएवा ने पुछे चांगुटु खेले।
2: नेपाल भाषा या न्याही पुसी चौमेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स FM 98.3 मेगाहर्स।

0: Jeeps 98.3 FM, your companion.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी।
1: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग,
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग।
3: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल।
1: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM।
3: पहला नशा पहला खुमार।
1: स्टेशन गिव्स FM 98.3 MHz।

0: एक घंटा तीनवटा मूवीज का सुपरहिट गीत
1: एवरी
2: सैटरडे 9 AM एंड थर्सडे 6 PM
3: भैगोनी जाऊ छोडेर जानेलाई भैगोनी जाऊ तर्केर जाने
2: किप्स अनप्लग्ड नेपाली आर्टिस्ट सिंगर्सहरूका अनप्लग्ड गीतहरू सुन्न नछुट्याउनु होला हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजे र शनिबार दिउँसो 4 बजे।

0: number 16.
1: इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया।
2: मूवी
3: ओ रोमियो।
2: सॉन्ग
3: आशिकों की कॉलोनी।
1: शाम

0: top song of the week at number one.
1: इंटरनेशनल
2: मूवी
3: है जवानी तो इश्क होना है
2: सॉन्ग
3: या

0: प्रस्कुसात अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यु आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टु सक्सेस?
3: सिम्पल। Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: KIPS FM 98.3 MHz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.
5: Every Saturday 10 a.m., Monday 6 p.m. and Friday 2 p.m.
6: Namaskar and hardik swagat cha. Tapai sunne hunuhuncha KIPS 98.3 FM.
7: Hajur namaste and swagat cha. Yo KIPS FM 98.3.
8: Hajur appa, tanike namaskar. KIPS 98.3 FM.
9: Yo ho, KIPS 98.3 FM. तपाईं सँगको सहयात्रा
10: नेपाली पप फ्ल्याशब्याक